वाज पंच शब्द तत कार सभागा कार सभागा शब्द वाज कला जत कार तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारे।

संतोष विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को पुंछा तिसका होय उधार हो एह वस्तत जी नह जाई नित नित राखो तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसार हो सलोक।

है जस स्मरत सो कोय सगल दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हो जाती है ना, और उस वेले उन्हां नूं एक धार्मिक रस्मां द्वारा अपने धर्म दे विच लिआंदा जांदा, भावें वह खत्रियां दे घर पैदा होए सन, बेदी खत्री सन, पर एक धार्मिक रस्म जिदा असी सिख सिख करते हाँ। हुण सतसंग जी दरअसल जे आपां देखिए ना, अमृत पान करना, अमृत जिन्ना तक पान नहीं करते उन्ना चर असी गुरु के सिख नहीं बन जाते। ठीक है, मत्था टेकिया, लंगरां दे विच सेवा भी कीतियां, पर सतसंग जी एक सानू एक वर थोड़ा जिहा भरम दे विच पा दिता गया, वह की है, एक सहज जो बंदा ना गल करता है, हाँ जी मैं सिख नहीं, मैं सहज धारी सिख हाँ, मेरा वैसे टॉपिक नहीं सी, मेरे दिमाग दे विच गल आ गई, मैं क्या सांझी कर लवां तुहाडे नाल। बंदा सोचता मैं सहज धारी सिख हाँ, सहज तो भाव सहजे सहजे, हुण गुरु प्यारे सिख ते सिख हुंदा सहजे सहजे दा ते मतलब कोई ना ना होया, माफ करना, गुरु के प्रचारक होण दे नाते जे असी तुहाडे नाल कोई गुर मर्यादा दीआं गल्लां ना कर सके ते जे कल्ले पैसे इकट्ठे करके डालर इकट्ठे करके चले गए ते असी गुरु नूं मूंह दिखाउण जोगे नहीं रहांगे। सतगुरु भला करे जिहड़ियां असी तुहाडे नाल ढिड्डों गल्लां करन दा यतन करीदा ना, सतसंग जी कई बार यह सोचियां नहीं हुंदियां जिहड़ियां गल्लां असी संगत विच आ के कर देईदियां, वह कोई पिछों असी बना के नहीं लैके आए हुंदे बूरा। और सतसंग जी साडे एक रवाज चलिया होया भी सहज धारी सिख, हुण आपां कितें दूजियां कौमां वल झाती मार के देखिए, कोई कदी अज तक सुनिया भी हिंदू सहज धारी आ, ये मुसलमान सहज धारी आ, ये ईसाई सहज धारी, ये बोधी जिहड़ा ये सहज धारी आ, ये सिख ही कला सहज धारी क्यों नहीं? प्यारियो ये साडा भरम है, एवें एवें बहाने ने गुरु तो दूर होण दे, बस जी छकना छकाउणा भी आ, खाना पीना हुंदा, और इस करके बहाना असी गुरु नूं माया दे दीदी आ, उत्थे चढ़ावा भी चढ़ा दीदा, आटे दीआं थैलियां दे आईदियां, और फरूट भी दे आईदा, बड़ा कुछ दे आईदा, ते सहज धारी मैं सिक्खी दे उत्ते किसे दी उत्ते चक नहीं करदा, मेरे तो तुसी सहज धारी लखां गुणा चंगे हो सकदे हो, मेरे विच 100 पाप हो सकदा, मैं बेईमान हो सकदा, मेरे नाल तुसी लख गुणा चंगे हो सकदे हो। हुण कई बार असी उदाहरणां दे दियां, बंदा किते एक अमृत धारी कोई छोटी जी गलती कर दे, किते छोटी जी भुल हो जाए ना, ते साडी सारी कौम नूं इको ही रस्से दे विच विदरदा जांदा, लो जी देखो ये अमृत धारी इदां दे हुंदे आ, ये इदां ही करदे आ, ये इदां दे, इन्हां दे काम इदां तो, गुरु प्यारे बड़े उलामे दिते जांदे आ, ते मैं बेनती करिया करदा सानू उलामे देण दी बजाए तुसी आओ अमृत छक के समाज दे विच विचरो, असी तुसी एदां दा चंगा जीवन बनाओ, छड्डो अमृत धारियां दीआं गल्लां, छड्डो साडियां गल्लां, तुसी एदां दा जीवन बना के तुसी अमृत धारी हो के समाज दे विच आओ, असी तुहाडियां उदाहरणां दिया करांगे, असी उन्हां नूं छड्ड देवांगे, पखंडियां नूं बेईमानां नूं साडे विच 100 औगण आ, असी छड्ड देवांगे, असी तुहाडियां उदाहरणां देवांगे। सो एक सहज धारी शब्द ने साडी कौम दा बहुत वड्डा नुकसान कीता, ए गुरु महाराज कृपा करे असी इहनूं समझण दा यतन करिए, ए साडे नाल बेईमानियां हो रहीयां, सिख सिख है, सहज धारी दा मतलब कोई नहीं हुंदा, जद दूजियां कौमां विच कोई सहज धारी नहीं है ते सिखां दे विच कित्थों आ गया, सतगुर कृपा करे। आपां जनेऊ दी मैं तुहाडे नाल गल करन लगा सां, धर्म दे विच गुरु बाबा नानक जी नूं लिआउणा चाहुंदे ने, और उन्होंने धार्मिक रस्म है, रीत है, रवाज है, जनेऊ पाउणा सी, रिश्तेदारी बरादरी इकट्ठी कीती हुई है, पंडित जी आए हुए ने, पंडित हरदयाल जी, बड़ी बजुर्गी दी उम्र है उन्हां दी, बड़ा सत्कार सी उन्हां दा, और ये सारियां रस्मां जिहड़ा पंडित हरदयाल जी करिया करदे सन, जो भी धार्मिक रस्मां हुंदियां सी, ते पिता कालू जी ने सद्दा पत्र देता दिन निश्चित करके अपने रिश्तेदारां साख संबंधियां नूं, और वड्डे अहुदे दे उत्ते सन उस वेले, माल महकमे दे वड्डे अफसर सन, 10-12 पिंडां दी जिम्मेवारी उन्हां दे कोल सी, राय बुलार जी दे जमीन दे हिसाब किताब रखण दा, ते गुरु प्यारे इलाके दे विच चंगी बनी होई सी, इत्थों तक कल्ले हिंदू ही नहीं वड्डे वड्डे मुसलमान भी उन्हां दे इस धार्मिक समागम दे विच पहुंचे हुए सन। हुण पंडित जी जनेऊ दी रस्म कर लगे आ, ते सतगुरु बड़ी निगाह टका के उन्हां वल देख रहे ने, पंडित जी की कर रहे आ, और देखण वाला बंदा यही सोच रहा सी भी नानक जी गौह दे नाल देख रहा है, इन्हां नूं अज चा होना आ भी मेरे गल दे विच जनेऊ पाया जाना, ये चा दे नाल देखदे आ, पर सच्चे सतगुरां दी सोच विच की दौड़ रहा सी वह सच्चा पातशाह जानता है।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹ

0: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: इको जे हसब नाली रख

नानक ने हट खोलिया सौदा रहणगे नसीबां वाले गुरु प्यारियो गुरु बाबे नानक दा हट जिहड़ा उदों खोलिया होया सी ना 550 साल पहला वह अज भी हट खुला होया पर साडियां नजरां दे कोलों पहचान ना होया जिहड़े इस गुरु नानक दी हट्टी तो सौदा लै गए वह फिर गुरु वर्गे बन गए। बाबा लैणा जी सौदा लैण आए सी गुरु बाबे नानक दी हट्टी तो सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करके ओ गुरु बाबे दा रूप बन जांदा लैणे तो अंगद बन जांदा। जिन्हां ने सौदा लिया उन्हां ने अपने सिर जाके आरियां दे डाड़ा ते उन्हां ने दस दस के बंद कटवा लै उन्हां ने सने केसां दे खोपरियां उतार लिया जिन्हां ने गुरु बाबे नानक दी सौदा हट्टी तो सौदा लिया। अज सिख सतगुरां दे पासों जदों सौदा लैण जांदा है ना अपनी मर्जी का सौदा भालदा बाबा नानक तेरी मर्जी का नहीं मेरी मर्जी का सौदा। सत्संग जी भेजे बाबा नानक ना कर दवे बई नहीं सजना इत्थे सच का व्यापार हुंदा सच का सौदा मिलदा ते अज सिख भी इदां दा हो गया कहिंदा बाबा भई होर हट्टी भाल लैने आ इत्थे किते हट्टियां दा घाटा बथेरे ठग तुरे फिरदे हट्टियां ला ला के सिक्खी दे भेस दे विच आपां होर कोई बाबा लभ लैने आ। सो गुरु प्यारिओ साडा बाबा पुत मरवा के सौदे दिंदा इत्थे सिरां दे सौदे हुंदे आ इत्थे आप गवाई है तां सो पाई है और कैसी चतराई इत्थे पहला आप गवाउणा पैंदा है जद जुड़ना प्रीतम प्यारे ना फिर तन कटवाउणा पैंदा है। सो तन कटवाण वालिया ने जिदा सौदे लै सो उन्हों का जिक्र ढाडी जथा तुहाडे नाल करदा।

0: जी तेरा पाठ ते साध संगत दी विश्राम दा महंगा विश्राम है। जे आपा चाल दे वेग च तुरे जाइए ते अंधा ते जाके विश्राम ला जाने आ, पर शुद्ध विश्राम जिवें ज्ञानी जी ने उचारण करके आप जी नूं दस्या है, नाम ना पाया तेरा इथे विश्राम ला के अंधा थोड़ा जिहा ठहरा लाउणा। अंधा भरम भूला मन मेरा, भूला पाठ ते ठमक लाउणी, पर विश्राम तेरा ते ही लाउणा। नाम ना पाया तेरा अंधा, इथे विश्राम नहीं लाउणा, तेरा ते विश्राम याद रखना।
1: रहाओ साध कीते दुख पर फुड़े, पूर्व लिखे माए
0: पर बोल के फुड़े, उचारण कठा ही है शब्द सारा, पर उचारण इसे तरह पर फुड़े, पर फड़े नहीं कहना, पर फुड़े जिवें उचारण किया गया।

0: जाल नेत इथे जमक ना वस्त अली आल अली अल पाठ सरूपां दे विच कठा छापिया है पर साध संगत जी अलग अलग पाठ पढ़ना जिवे ग्यानी जी ने उचारना लिखती रूप भी पदछेदां दे विच संपर्दा दे विच अलग अलग पढ़ाया जांदा ते अगला शब्द है मेर चा गुण चचा जेड़ा है पहला ओनू अलग कर लेना ते दूजा जेड़ा चागुन पाठ है उदा चचागुन पाठ सरूपां दे विच छपिया है पर संपर्दा दे विच चागुन रे इदा पाठ जिवें ग्यानी जी ने उचारण कीता है बास जाल नेत ना वस्त अली आल मेर चागुन रे इदा जिवें उचारण सरवण कीता है इसे तरह ही करना जी
1: चंद कमुदनी दूर निवसास अन पाओ कारण रे
0: ते कुमदनी पाठ पोला ही करना कुमदनी नहीं करना कके दी भी औंकड़ है ममे दी भी औंकड़ है ते इथे होर किसी अखर ते जोर नहीं देना चंद कुमुदनी दूरह निवसस अन पाओ कारण रे
1: अमृत खंड दूध मद संचस तूब न चातुर रे
0: हां जी ये भी पाठ तूब न तूब जेड़ा है बब्बा जेड़ा है वो तू दे नाल जोड़ देना तूब ना ते नानू नखेड़ के साथ संगत दी पढ़ना जो आपा लड़ीवार स्वरूपां च पढ़दे उत्थे नहीं ये भरम रह जांदा क्योंकि सारे दे अखर संगली बीड जिन्हों कह देने आम पंजाबी भाषा दे विच उत्थे साध संगत दी पर जो पदछेद किया गया पदछेद वालिया ने पता नहीं ये पाठ अगे पिछे किवें कीते हन सो संप्रदायी जेड़े साध संगत जी भाग शब्द ने उन्हां दे विच ये पाठ तूब ना जां जिहड़े लड़ीवार तो पढ़दे हन इह संपर्दा दे विच पढ़ाया जाण वाला पाठ अमृत खंड दूध मद संचस तूब न चातुर रे
1: अपना आप तू

0: बक्से बहुत बढ़िया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब।

0: उड्डा नह हंस नह कंध छीजै मारू महला पहला।
1: इस शब्द दे विच जो चपल शब्द आया है पद आया है ते इनू ज्ञानी जी ने तीन चार वार पोला ही उचारण किया, इसे तरह पोला उचारण करना है।

0: पोला गुनह नहीं, गुनह कहांगे ते गुणन गुणा दी गल होवेगी। गुनह दा मतलब है गुणा, जेड़े गलतियां पिछले गुनह बखसाए जीओ अब तू मार्ग पाए।
1: हार की

एक सच्चा सब सेव दी तुर भाग मिलावा होए। गुरमुख मिले से न विछुड़ पावह सच सोए। एक भगती सार न जाननी मनमुख परम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किछु न जाए। जिस नाल जोर

0: डर पै धरत आकाश नखियत्रा सिर उपर अमर करारा।
1: नखियत्रा पाठ नन्ना खखी नुसियारी ऐड़ा तत्ता चरना चरारा ते कन्ना जेड़ा यही दा चिन्ह है खखे नु सिहारी ते ऐड़े दे नाल उचारण होवेगा नखियत्रा जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है डर पै धरत आकाश नखियत्रा सिर ऊपर अमर करारा।
0: ਆਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਡਰ ਪੈ ਇੰਦਰ ਬੇਚਾਰਾ ਏਕਾ ਨਿਰਭਾਉ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ

जवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहेओ जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगंत उधारे।

0: आयो मान पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई।
1: पहला पाठ निवारे ते दूसरा निवरे है। दोवां पाठां नूं जिवें ज्ञानी जी ने विशेष ध्यान दे के उच्चारण कीता है, काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई, दोवां नूं ध्यान दे नाल उच्चारण करना जी।
0: साध हजूर हाजर है नाजर कत है ना भयो दूराई। सुख सीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पदत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई। निर्भओ भय सगल भय खोए गोविंद चरण ओटाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिव लाई। मारू महला पंजवा जो समर्थ सर्ब गुण नायक तिसको कबहु न गावस रे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा आको फिर तावस रे। अपने प्रभ को क्यों ना समारस रे। बैरी संग रंग रस रचिया तिस स्यो जियरा जारस रे। रहाओ जाके नाम सुनिया जम छोड़े ताकि शरण ना पावस रे। काट दे स्याल बपुरे को ताकि ओट टिकावस रे। जिसका जास सुनत पाव तरिये जिसका जास सुनत भाव तरिये तास्यो रंग न लावस रे। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकावस रे। भयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पात पाई। कहो नानक त्रैगुण भ्रम छूटा जौ प्रभ भय सहाई। मारू महला पंजवा अंतर जामी सब विद जाने तिस्ते कहा दुलारियो। हस्त पाव चरे खिन पीतर अगन संग ले।

असाध रोग उपजियो तन भीतर टरत न काहू टारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत् बिचारियो मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न कोऊ आद मद अंत है सोऊ संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गहे ओ साचा सोए सुख पाया फिर

सूर मुगता शशि मुगता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय सुभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह मन

अखयो पाठ करना अखयो नहीं करना जिवे उचारण कीता अटल अखयो एड़े नो गेतर ला के अटल अखयो देवा मोहन अलख अपेवा अखयो तो भाव ना स्वैत

मैं एक दफा फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। कार्ल मार्कस दे विचारां तो वक्ती तौर ते अद्धी दुनिया प्रभावित हो गई सी। चाइना, टैंजानिया, कोरिया, लाओस, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ये सारा उस तो प्रभावित हो गया सी। इतनी दुनिया किसे वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि पैगंबरां की गल अंतरमुखी है, उसकी गल सिर्फ बारमुखी सी, बारमुखी सी। और जब कभी कोई मनुख पूर्ण तौर पर अंतरमुखी हो जाता है, वही भगत है। तो भगति की जो रूपरेखा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी चित्र दी, मैं फिर कल थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया, साहब रहमत करन, बख्शिश करन, सानू उस अगम्य अवस्था की झलक देन, जिस झलक का धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी जिक्र कर दिए। हुण आप गुरबाणी का एक शब्द कीर्तन दे राही सरवण करो। आनंद साहब का पाठ, फुल चुग दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु वर्णन सके मेहमान जो तिहारी, हमना सिफते कर

मन होर मुख होर मुंह तो कहना हरी हरी राम राम दिल विच कपट भरिया होया दिल कत्ती अंदर दिल विच कंची आ कि दूजे का कम कटदा जुबान तो गुड़बत्ती मुंह तो बत्तां गुड़ वालियां कहने दिलों ये चल रहा है वे दा कम खराब कर रहे रब तो दिल विच ही है जिन्नी देर दिल विचों कपट नहीं छड़दा उन्हें मिले सात संगत इस समागम करवाउण दा कोई मकसद है अपना दिल करके अपना साफ होइए किसे नाल बेईमानी ना करो मैं तो सीधा कहना हुंदा बाबा जी बैठे ने भी तुहानू हरेक समागम ते भी जिठे एतवार भी सीधियां गल्लां यही समझाउंदे ने अपना समझ लईए कोई गल जे अपने घर का कूड़ा कढ के गुआंढियां मोहरे लाउणा है सवेरे नेरे नेरे फिर गुरुद्वारे झाड़ू फेरन का कोई फायदा नहीं जे झाड़ू नाल अपना कूड़ा गुआंढियां मोहरे करना है फिर गुरुद्वारे झाड़ू फेरन का कोई फायदा नहीं जे अपने घर बैठे बुजुर्गां दे कपड़े नहीं धोने फिर गुरुद्वारे दीआं चादरां धोण दा पई मैं लोकां तो हैरान हुन्ना अपनी गली विच इन्ना इन्ना घाह होया ऐतवार जाके बड्डी किते होर जांदे आ देखो माड़ा नहीं है कोई सत्संग करो नाम जपो सिमरन करो सेवा करो पहलां सवेरे उठ के अपना घर तां वेखो तुहाडी गली दे विच इन्ना घाह नाली ते जम्मिया होया है उह कदे पट्टिया नहीं होर किते जाके घा साफ करने दी सेवा कर रहे हैं सेवा ते आए हुए हैं जेड़ा घर वह भी तो सेवा है पहलों उत्थों शुरू करो रब तुहाडे घर विच रहिंदा है रब तुहाडे हिरदे विच रहिंदा है अपने मन विच ध्यान धरके कह सतनाम श्री फिर आखो सतनाम श्री जदों जपन लग जाओगे दिल विचों ही उन्हें मिलना है एक बार गुरु दा ध्यान धरके सारे प्यार नाल पढ़ो ये समा और स्वास सफल होण मिलके प्यार नाल कहो सतगुरु।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਣ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਇਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੱਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਘੁਬਰ ਪੈ
0: ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ
1: ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਨ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਦੂਤ ਸਹਿਜ ਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਅਜ ਮਹਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਵਰ ਹਾਰ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅੰਤ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ
0: ਅਰਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਹੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭ ਤੇ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਕ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਪਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪਮਤ ਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਤੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਏ
0: ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਤਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਤਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਣ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਫਟ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਸਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार,
0: पूजा सत सत सेवदार,
1: दर्शन सत सत पेकनहार,
0: नाम सत सत त्यावन हार,
1: आप सत सत सत धारी,
0: आपे गुणकारी,
1: शब्द सत सत प्रभक्ता,
0: सुरत सत सत जस सुनता,
1: भुजन हार को सत सब होए,
0: नानक सत सत प्रभ सोए,
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया,
0: नानक रावण तिन मूल पछाने,
1: जानकर हृदय विश्वास प्रभाया,
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया,
1: भय ते निरपो होए बसाना,
0: जिसते उपजा तिस माहे समाना,
1: बस माही ले बस कटाई,
0: ताको भिन्न न कहना जाई,
1: पूजय पूजन हार विवेक,
0: नारायण मिले नानक एक,
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी,
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत,
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत,
1: ठाकुर को सेवक जाने संग,
0: आपका सेवक नाम का रंग,
1: सेवक को प्रभु पालन हारा,
0: सेवक की रख निरंकारा,
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै,
0: नानक सो सेवक सास सास समार,
1: अपने जान का पर्दा ढाकै,
0: अपने सेवक की सर पर रख,
1: अपने दास को देव डाई,
0: अपने सेवक को नाम पाई,
1: अपने सेवक की आप पत रख,
0: ताकि कदमित कोई न लख,
1: आपके सेवक को कोऊ न पहुँचे,
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया,
1: नीकी कीरी मह कर रख,
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख,
1: जिसका शासन काटते आप,
0: ताको राख दे कर हाथ,
1: मांस जतन करत बहु भांत,
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात,
1: मारा न रख अवर न कोई,
0: सर्व जिया का रखा सोए,
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी,
1: बारंबार बार प्रभु जपी है,
0: अमृत मन तन तरपी है,
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया,
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया,
1: नाम धन नामो रूप रंग,
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने,
0: मन तन नाम में नाम समाने,
1: उठ बैठ सोवत नाम,
0: रहो नानक जन कै सद काम,
1: बोलो जस देवा दिन रात,
0: रबे अपने जन कीनी दात,
1: रहे भक्त आत्म कह चाये,
0: रबे अपने से रहे समाये,
1: जो हो वाह हो वत सो जाने,
0: रबे अपने का हुक्म पछाने,
1: इसकी महिमा कौन बखानो,
0: इसका गुण कह एक न जानो,
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे,
0: रहो नानक से ही जन पूरे,
1: मन मेरे तिन की ओट ले,
0: मन तन अपना तिन जन दे,
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता,
0: सो जन सर्व थोक का दाता,
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे,
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे,
1: अब सियानक सगली छाड़,
0: जिस जन की तू सेवा लाग,
1: आप न जान न होवी तेरा,
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा,
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाम,
0: जिसके संग सिख उदर है, नानक हर गुण गावे। अष्टपदी
1: सतगुर सेवकी करे प्रतपाल,
0: सेव को गुर सदा दयाल,
1: सेवकी गुर दुरमत मल हिरै,
0: गुर बचनी हर नाम उचरै,
1: सतगुर सिख के बंधन काटै,
0: गुर का सिख बकार ते हटै,
1: सतगुर सिख को नाम धन दे,
0: गुर का सिख बड़ भागी हे,
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै,
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै,
1: गुर कै गृह सेवक जो रहै,
0: गुर की आज्ञा मन में सहै,
1: आप उसको कर कष न जनावै,
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावै,
1: मन बेचै सतगुर कै पास,
0: सेवक के कार्य रास,
1: सेवा करत होए निकामी,
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी,
1: अपनी कृपा जिस आप करे,
0: नानक सो सेवक गुर की मतले,
1: इस विश्वे गुर का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने,
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ,
0: अनक बार गुर कौ बल जाओ,
1: सर्व निधान जी का दाता,
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता,
1: ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म,
0: एक आप नहीं कछ भरम,
1: सह सियान पलिया न जाइए,
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई,
1: सफल दर्शन देखत पुनीत,
0: दर्शत चरण गत निर्मल रीत,
1: देखत संग राम गुण रवे,
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे,
1: सुनकर वचन करन आगाने,
0: मन संतोखा तंपति आने,
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र,
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत,
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस भाव जिस लय मिलाए,
1: वाहे कुशत अनेक,
0: सतपुरख पूर्ण विवेक,
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी,
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी,
1: निराहार निर्वैर सुखदाई,
0: ताकि कीमत किने न पाई,
1: अनक भक्त बंधन नित करहे,
0: चरण कमल हृदय सिमरै,
1: सत बलहारी सतपुर अपने,
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने,
1: यो हर रस पावे जन कोई,
0: अमृत पीवे अमर सोए,
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश,
0: जाके मन पर टे गुणतास,
1: आठ पैर हर का नाम ले,
0: सच उपदेशे वको दे,
1: मो माया के संग न लेप,
0: मन में रखे हर हर एक,
1: अंधकार दीपक प्रगासे,
0: नानक भरम बहुत दुख ते नासे,
1: संत माही ठांड बरताई,
0: अनंत भया दुख नाठे भाई,
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेशे,
1: भव चूका निरपो होए बसे,
0: सगल व्याध मन ते कह नसे,
1: जिसका साधन कृपा धारी,
0: साध संग जप नाम मुरारी,
1: चित पाई चूके भ्रम गमन,
0: सुन नानक हर हर जस सरवण,
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही,
0: कला धार जिन सगली मोही,
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए,
0: अपनी कीमत आपे पाए,
1: हर बिन दूजा नाही कोई,
0: सब निरंतर एको सोए,
1: ओत पोत रविया रूप रंग,
0: भय प्रकाश साध का संग,
1: राज रचना अपनी कल धारी,
0: अनक बार नानक बलहारी,
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन, दिखिया सगली शार,
0: हर हर नाम कमावना, नानके हो तन सार। अष्टपदी
1: संत जना मिल करो भी प्यार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप समीत पसारो,
0: चरण कमल विद मैं उतारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर वत,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाये,
0: रोग मिटै हर अवखद लाये,
1: सर्व निधान मैं हर नाम निधान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थाप ते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: काता ती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाये बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटै प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: जाल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटम हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुरकी मातू ले आने,
0: भगत बिना बूते सियाने,
1: हर की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
1: आप जपो अबरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: बिनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: यहां सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाहे,
0: एक सिमर एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मन तन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक ओट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महासुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपर परे प्रेम रस रंग,
0: जय चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन लिवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुखोए,
1: सेवक की मनसा पूरी भई,
0: सतगुरु ते निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: इच्छपुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: जब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाये,
1: सोक्यों बिसरे जे काव न पाने,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जिन सब किश दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राखे,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनो जनो का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: प्रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरे नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम,
0: मूर्त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंद दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो है पुनीत,
0: भक्त पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, आपन किया नानका आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते होता।
1: जब धारी आपन सुन समात,
0: वैर विरोध के संग कमात,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत,
0: तब हरक सोको कसै व्यापत,
1: जब आपन आप आपार ब्रह्म,
0: तब मोह कहां किस होवत भरम,
1: आपन खेल आप वर्तीजा,
0: नानक करने हार न दूजा,
1: जब होवत प्रभ केवल धनी,
0: जब बंध मुगत कहो कसको गनी,
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाई,
0: जब शिव शक्त कहो गित ठाए,
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै,
0: तब कवन निडर कवन कत डरै,
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर एक में पार,
1: अवनाशी सुख आपन आसन,
0: जन्म मरण कहो कहां विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: आपन आप ही अचरजा,
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै,
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावै,
1: करन करावन करना हार,
0: नानक करते का नहि समार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई,
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहां को चीन,
1: जब आपन आप आपुर धारै,
0: शगन अपशगन कहां विचारै,
1: जय आपन ऊच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जन हो,
1: जय छल अशेद अभेद समाया,
0: वहां कसे व्यापत माया,
1: आप उसको आप ही आदेश,
0: गुण का ना ही प्रवेश,
1: जय एक ही एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
1: जय आपन आप आप पतियारा,
0: जय कौन कथे कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुंचा,
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: गुण मैं की नो विस्तार,
1: पाप पुन तह पई कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विषावत,
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार,
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान,
1: आपन खेल आप कर देखे,
0: खेल संकोचे तो नानक एक है,
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसरे पसार संत प्रताप,
1: तुम पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी,
1: आपे कौतुक करे अनब जोज,
0: आपे रस भोग निर्जोज,
1: जिस भावे तिस आपन नाय लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
1: बेशुमार अथाह अगन अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले, श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार,
1: जात पावे तन श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाने लय समाये,
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: आपन सूत सब जगत परोए,
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए,
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: जी जंत्र सबका कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस राख तिस कोय न मारे,
0: सो मु आज समनो बिसारे,
1: तिस सच अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय,
1: की जुक्त जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जान साथ,
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार,
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसै त्यात,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या,
0: कर्म हार नानक एक जाने,
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न वृथि जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इसके ऊपर नहीं भी चार,
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर,
0: हर दिन पूजा गुर के पैर,
1: हे लोग सुखी है परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद,
0: गुण गावो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरन का यह स्वाव,
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा,
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: सुख उपदेश हृदय बसावो,
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत दो लेहो सवार,
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: मन बसे ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जपो लिबलाए,
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निध है खेप तुम्हारी,
1: एक काटे कर रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए,
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर्भव जपै सकल भव मिटै,
0: प्रभ कर पाते प्राणी छुटै,
1: जिस प्रभ राख तिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै हंकार,
0: इस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सोहत निहाल,
0: ताके निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया,
0: साध संग नानक हर त्याया, श्लोक
1: ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
0: हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सकल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरित विस्माद
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक ते दिन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट व्यापर है भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: संतर माहे
0: चार कुंट दिशा समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाओ
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख
0: सस्य सूर न खतरे मैं एक
1: वाणी प्राप्ति सबको बोले
0: आप डोल न कब हूँ डोले
1: सर्व कलाकर खेल है खेल
0: मोल न पाइये गुण है मोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
0: धार रहे स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास
0: नानक तन में एको विश्वास
1: संत जना का देखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी यह रह
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो हो सोई सुख मान
0: कर्म करावन हार प्रभु जन
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत की आ सब सत
0: जिस प्रभु ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विस्तार
0: इस भावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर
0: आपे आप आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वरतारा
0: सर्व नैने आप खनहारा
1: सकल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किस कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जापा वैता लय समाए
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप भला करतूत अतनी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: ओत पोते अपन संग राज
1: ताकि गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए तो सोजी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए लय प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया
1: जाने मन का यह सुहाओ
0: जन के संग चित आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

एक चोटी दा वपारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्मज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहीदी है धर्म नू समझण वास्ते। बड़ी मशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक। जिन्ने नाम ध्याया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा है, बहुत घट आउंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा, किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनू थोड़े बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा। हुण होर भी मैनू कहण लेना, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं होंदे, नहीं होंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होवेगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे चना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो, उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। तेरे जिन्ना मिलिया तेरी याद चल पाए, जिन्ना दे संदनिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है, सेवा नाल बनते ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है, मेहनत नाल धन कमाया धन दान दे दिता सेवा है। दान सिमरन नहीं है, और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होंदा, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माल है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है, बेईमानी करके धन कमाया दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए। दानी पाप करके धन इकट्ठा करदा है फिर दान देंदा है, कहंदा मैं धार्मिक कर्म कीता, हद हो गई। जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालों दित्ता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया? गुरबाणी बहुत गहराई जांदी, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलदी, एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा है। दो दानी लड़ पैंदे ने, दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है।
कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पे करदा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे नाही मोया सात ना जाए, बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन कट्ठा ही नहीं होंदा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है, जिहड़ा कट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमाए, धार्मिक इकट्ठ धार्मिक सूझ बूझ नू पैदा करने वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाए, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर विच प्रवेश उसनों मिलदा है जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है, इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, ये अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए है। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारियां नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हों का इलाकों नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हों के नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਰਾਕੀ ਨੇ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵਗਦਾ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਹੈ, ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਥੇਮ ਦਰਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਥੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਗਰ, ਨਾ ਗੰਗਾ ਨਾ ਜਮੁਨਾ, ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾ ਬਿਆਸ, ਨਾ ਰਾਵੀ ਨਾ ਚਨਾਬ,
ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਾ ਨਰਮਦਾ, ਨਾ ਦਜਲਾ, ਨਾ ਫਿਰਾਤ, ਨਾ ਨੀਲ, ਨਾ ਥੈਮ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਬੜੇ ਤਾਰਕਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਟਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਫਿਰ ਕੱਟੋ ਉਸਦੇ ਬੰਦਵੰਦ, ਬਿਠਾਓ ਉਸਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਕੱਟੋ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚ, ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਗਰਦਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹਲੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ 1934 ਦੇ ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ। ਅਗਰ ਖੋਤੇ 900 ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ, ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਗਿੱਦੜ 900 ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਗਿੱਦੜ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਗਊਆਂ ਸਿਰਫ 100 ਨੇ ਤੇ ਸੂਅਰ 900 ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫੇ ਸੂਅਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਗਊਆਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੂਅਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਗਿਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਯੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਸ਼ਖਸੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਲਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਯਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ,
या डेमोक्रेसी का तमाशा होवे या जमहूरियत का तमाशा होवे या शख्सी हुकूमत का करिश्मा होवे शक्ति होवे माण मर्यादा होवे जलाल होवे जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सिर्फ धर्म नू कढ़ दियो कहिंदे चाहे शख्सी हुकूमत होवे किंगडम होवे ते चाहे डेमोक्रेसी होवे सिर्फ धर्म नू कढ़ दियो तो हुकूमत कर रहा है चंगेज खां हलाकू हिटलर मोसोलिनी। फिर हिटलर की करेगा 2.5 करोड़ बंदियां नू कतल करेगा बंदियां नू सुख देण वास्ते 2.5 करोड़ बंदियां नू कतल करना है क्रांति लियाण वास्ते 3 करोड़ बंदियां नू मारना है मौसम त्यूंग ने 3 करोड़ बंदियां नू मार के 3 करोड़ नू उजाड़ के क्रांति लियांदी सी चाइना। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। धार्मिक मनुख दे बंद बंद क्यों कट दिते गए एक होंदा है करोड़ां दी भीड़ अधार्मिक लोगां दी धार्मिक मनुख सोली ते क्यों चढ़िया बड़ी भारी भीड़ देखण वाली सी भीड़ देख रही है सोली ते चढ़ाया जा रहा है भीड़ अधार्मिक लोगां दी एक धार्मिक मनुख नूं सोली दित्ती जा रही भीड़ पापियां दी एक धार्मिक मनुख दा चांदनी चौंक दे गला कटिया जा रहा शहीद किया जा रहा भीड़ जालमां दी सी एक मासूम बच्चियां नूं दो मासूम बच्चियां नूं दीवारां चिणिया जा रहा ये थोड़े होंदे ने कल्ला होंदा है ते कल्ला भी हर शहर दे च नहीं होंदा। मैं एक दफा फिर दोहराण लगा हर शहर दे चोटी दे धनवान होणगे और उन्हां नूं माण भी मिलेगा धन करके हर शहर दे चोटी दे कारोबारी होणगे हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी होणगे हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने साइंटिस्ट होंदे ने हर शहर दे च लॉयर कानून नूं समझण वास्ते समझण वाले वकील भी होणगे और होंदे ने हर शहर दे च ब्रह्मज्ञानी नहीं होंदा हर शहर दे च संत नहीं होंदा हर शहर दे च कोई रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। अगर होंदी ते सानू अरदास च शब्द ऐड करन दी लोड़ नहीं सी हे गुरुदेव रहमत कर सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते तेरी याद बने। बहुत औखा है मजमून गुरु नू समझना समझाना प्रभु नू समझना समझाना बहुत बारीक मजमून है अति सूक्ष्म मजमून है अति सूक्ष्म। इस वास्ते चोटी दा साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकिया उत्थे जिथे एक भगत पहुंच जांदा पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोए कोई सूरबीर कोई छतरपति राजा कोई चोटी दा ज्ञानी कोई चोटी दा दार्शनिक ते साइंटिस्ट उत्थे नहीं पहुंच सकदा जिथे भगत पहुंच जांदा जिथे ब्रह्म ज्ञानी जो है पहुंच जांदा। तो मैं फिर अर्ज करा दर घर की सौजी ना है घर है परमात्मा दर है गुरु और दर घर नालों अलग नहीं होंदा उसे नूं दर कहिंदे ने जो घर दे नाल लगे होवे ते घर दे च जाना है दर दे चों लंघना पैगा दर दे च लंघ के घर दे च प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कवां खुलासा फिर जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओही शब्द दे रूप दे च दर है और जो शब्द दे रूप दे च दर है ओही प्रकाश दे रूप दे च घर है।
जो परमात्मा दे रूप विच घर है ओही गुरु दे रूप विच दर है और जो गुरु दे रूप विच दर है ओही परमात्मा दे रूप विच घर है। नानक सौ दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु विच भेद नहीं है, ते जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं दोवें एक ने तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने दोहां दियां क्रियावां वख वख ने तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं है। नानक सोदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु विच कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया, घर दर दे नाल जुड़े होया, प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर के हा सो घर के हा। इस दर तक साडा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ए मन आया भी सीधा सीधे रूप विच निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ए मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ए जोत विच जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करदे ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जगदे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ दिता। चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा। ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नू मौका मिल गया, राम राय दी देही नू अग ला देईए ते आपां खुद गुरु बने। ए विचकार रोड है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे। राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए। मैनू कहे गए ने 7 दिन बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत ले गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहने दे लायक नहीं रहा सी।
फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर प्रवेश करने की पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर नो नहीं साड़ती, पानी नहीं डोबदा। उस शरीर विच प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज विच बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया है, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारिया मसंदा नू डेरा दोन विच जिंदा जलाया गया। इस तरह दी अनेकां घटनावां ने आपां जितने बैठे हैं ने, इतने सत्संग दे सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होण, कि किसे सत्संग नू मन भावदा ओ देख लैन दूरों, इस शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ लैंदे ने पहुंच जा। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर दी मौत हो गई, इहदी मौत एडे डेरी हो जांदा, मिट्टी हो जांदा, सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा ना डे डेरी होंदा। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिन के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जाता है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ विच प्रवेश करने की सहूलियत संसार विच मौजूद है। 13 दिन के अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जाती है। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे, सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुन भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए, कदम अगे चलते रहे, कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहिंदे। ये 13 दिन के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जाते। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे, बड़ी सेवा कीती है, बड़ी बंदगी कीती है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रस्ते च ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है, ओ पेंडा केड़ा है, हुण मैं अर्ज करा, ओ चलण दे नाल ही रस्ता बनदा, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावा। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरमुख खोज अलक है, ज्यों आकाशे पंख उडंदा, मच्छी जैसे पानी विच चलदी है, ओदे चलण नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता चलती है फिर रस्ता बनता है, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपन नाल रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता जपदे ही रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, मच्छी चल पई रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी, रस्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे। जिहड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए,
ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨੀ ਵਾਟ ਇਸਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਜੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜੜ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਆ ਰਹਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਬਿਰਾਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੂਮ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਜੋ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਫਿਆਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਕੜੀ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਬੰਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜੜ ਭੂਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ ਜੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਮੂੜ, ਕਿਤਨਾ ਚੇਤ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਗਿਆ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਈਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਤੜਪ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਰਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਬੇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਂਰਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ,
उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने की सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पिया, सब नूं वेखदा पिया, सब नूं सुणदा पिया, सदा सुणदा पिया। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पिया और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा अनाहद ना। मनुख भी सुणदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है पर सीमत है। मनुख भी जाणदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को देव को जिन को परी को ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख का ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआ का भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति का भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरों का भविष्य अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं कह खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 ये कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा हाँ जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कह लग्या कि फिर हुण तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहा उदो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस दें। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटणगे जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान होवे, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, कि होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया। दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी, ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

0: बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है तो कबीर कहिंदे होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नूं दित्ते हुए ने। सीमत ने ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए। पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजणा का। बार बार धन्यवाद। फुल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib.

0: है तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
1: पहली बार है तलावा ऐसा तकिया,
0: बोले इको जे हसब नाली रखिया,
1: बोले इको जे हसब नाली रखिया।

नानक ने हट खोल लिया सौदा रहन गए नसीबा वाले गुरु प्यारियो गुरु बाबे नानक दा हट जिहड़ा उदो खोलिया होया सी ना 550 साल पहला वो अज भी हट खुला होया पर साडिया नजरां दे कोलों पहचान ना होया जिहड़े इस गुरु नानक दी हट्टी तो सौदा लै गए वो फिर गुरु वर्गे बन गए। बाबा लैणा जी सौदा लैण आए सी गुरु बाबे नानक दी हट्टी तो ते सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करके ओ गुरु बाबे दा रूप बन जांदा लैणे तो अंगद बन जांदा है। जिन्हां ने सौदा लिया उन्हां ने अपने सिर जाके आर्यां दे डाड़ा ते उन्हां ने दस दस के बंद कटवा लै उन्हां ने सने केसां दे खोपरियां उतार लिया जिन्हां ने गुरु बाबे नानक दी सौदा हट्टी तो सौदा लिया। अज सिख सतगुरां दे पासों जदों सौदा लैण जांदा है ना अपनी मर्जी का सौदा भालदा बाबा नानक तेरी मर्जी का नहीं मेरी मर्जी का सौदा। ते सा संगत जी भेजे बाबा नानक ना कर दवे भई नहीं सजना इत्थे सच का व्यापार हुंदा सच का सौदा मिलदा ते अज सिख भी इदां दा हो गया कहिंदा बाबा भई होर हट्टी भाल लैने आ इत्थे किते हट्टियां दा घाटा बथेरे ठग तुरे फिरदे हट्टियां ला ला के सिक्खी दे भेस दे विच आपां होर कोई बाबा लभ लैने आ। सो गुरु प्यारिओ साडा बाबा पुत मरवा के सौदे दिंदा इत्थे सिरां दे सौदे हुंदे आ इत्थे आप गवाईए तां सो पाईए और कैसी चतराई इत्थे पहला आप गवाउणा पैंदा है जद जुड़ना प्रीतम प्यारे ना फिर तन कटवाउणा पैंदा है। सो तन कटवाउण वालिआं ने जिद्दां सौदे लै सो उहनां दा जिक्र ढाडी जत्था तुहाडे नाल करदा।

की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहरमत होई है। सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवाना अंदर आप संगतां ने रबी बाणी दी पाठ बोध सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी की कृपा सदका हुण तक आपां 988 अंक तक सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ी सुनी विचारी है। साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की रहमत सदका 999 अंक तक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज 999 अंग तो मारू राग दी रंभता तो सतगुरु सचे पातशाह महाराज जी कृपा कर रहे हैं।

0: हां जी, तेरा पाठ ते साध संगत दी विश्राम दा महंगा विश्राम है। जे आपां चाल दे वेग च तुरे जाइए ते अंधा ते जाके विश्राम ला जाने आ, पर शुद्ध विश्राम जिवें ज्ञानी जी ने उचारण करके आप जी नूं दस्या है, नाम ना पाया तेरा इत्थे विश्राम ला के अंधा थोड़ा जा ठहरा लाउणा। अंधा भरम भूला मन मेरा, भूला पाठ ते ठमक लाउणी, पर विश्राम तेरा ते ही लाउणा। नाम ना पाया तेरा अंधा इत्थे विश्राम नहीं लाउणा, तेरा ते विश्राम याद रखना।
1: रहाओ साध कीते दुख पर फुड़े पूर्व लिखे माय,
0: पर बोल के फुड़े उचारण कठा ही है शब्द सारा, पर उचारण इसे तरह पर फुड़े, पर फड़े नहीं कहना, पार फड़े जिवें उचारण किया गया।

डूबै ना इस धन कौ मिलै सजाए इस धन की देख हो वडियाई सहजे माते अनदन जाई।

0: हाथ काज छोड़ तौ अपियो पीजै मीन की चापल स्यो जुगत मान राखी है उड्डै नह हंस नह कंध छीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन स्यो अमृत पीजै मीन की चापल स्यो जुगत मान राखी है उड्डै नह हंस नह कंध छीजै मारू महला पहला।
1: इस शब्द दे विच जो चापल शब्द आया है पद आया है इनू ज्ञानी जी ने तीन चार वार पोला ही उचारण किया इसे तरह पोला उचारण करना है।

0: सो बुझै जिस एक लेव लागी जीह रहै ने प्राती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती
1: ने प्राती जिवें पब्बा शुद्ध उचारण करके नन्ने नु गेतर ला के उचारण किया गया है जीह रहै ने प्राती ए ने प्राती पाठ ही करना निबराती नहीं करना बब्बा पब्बा सांझा भाव नन्ने नु अगेतर लाउणा सिहारी दे समेत जीह रहै ने प्राती।

0: पिछले गुनह बखसाए जीओ आब तू मार्ग पाए।
1: गुनह पाठ भारा करना पोला गुनह नहीं, गुनह कहांगे ते गुणा दी गल होवेगी। गुनह दा मतलब है गुनाह, जेडे गलतियां। पिछले गुनह बखसाए जीओ अब तू मार्ग पाए।
0: हार की

न विछुड़ पावह सच सोय। एक भगती सार न जाननी मन मुख परम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किछु न जाए। जिस नाल जोर

जिथे अवकट गलिया भीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए। मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए। मेरा मात पिता सुत बंध पो

मात पाव माता, पिता बनेता, शुद्ध पाठ किया प्रचंग सिंह ने गुरु की कृपा। आम तौर पर बेदानी पाठ करते बनता बनता पाठ नहीं सासे बनेता, नन्ने नूं सही थोड़ी जी आवाज आनी है। बनेता का भाव घर वाली स्त्री, स्वत पुत्र बंधप रिश्तेदार इष्ट प्यारे मीत मित्र अर अते भाई भरा, ये जिन्हें भी रिश्तेदार

ऐसा नहीं कि एक अंग देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है। देख सकिए अखई कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं, और जीड़ी दृष्टि है, जीड़ियां अखा हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं, पदार्थ दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं, परवार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को ना सुरत ना सर्वन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सका कुछ कह सका गवानी कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सका कानी कोई नहीं, बहरा। भाई साहब भाई गुरुदास जी बहरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सका मेरे कुल कन नहीं ने, और जिड़े कन मेरे कुल हैगे ने, इहदे नाल मैं ते परिवार की गल सुन सकदा तेरी नहीं, मैं संसार दीयां गल्लां सुन सकदा तेरे नहीं, मैं बिखे नाद सुन सकदा तेरा गीत नहीं, मेरे कोल कन्ने कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका मेरे कोल जबानी कोई नहीं। मनुख कोल जिहड़ी जबान है वध तो वध इहदे बोल पहुंचदे ने पुत्रां तक मित्रां तक परिवार तक। चलो किसे किसे दे बोलां च बरकत आउंदी, उहनां दे बोल राज दरबार तक भी पहुंच जांदे ने, राज घरानियां तक भी पहुंच जांदे ने, पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां दे बोल निरंकार तक पहुंचदे ने। जां का कहा दरगे चले, जिहदा कहा होया दरगाह विच भी चलदा, जिहदा बोलिया होया परमात्मा दी दुनिया च भी चलदा, जिहदा बोलिया होया परमात्मा भी सुणदा, ईश्वर भी सुनदा। जाका कहा दरगे चले। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे तक अपने बोल पहुंचा सका जबानी कोई नहीं, रसना ही कोई नहीं, तेरे बोलां नू सुन सका मेरे कोल कन ही कोई नहीं। कैलीफोर्निया दे भ्रमण करदे आया मैं गुरुद्वारियां च देख के दंग रह गया। 10 मिनट किधरे कीर्तन दे ज्यादा हो जान बैठना बड़ा औखा हो जाता है। 2-2 घंटे लंगर हार दे गप्पा मारदे रहेंगे, कोई टाइम ही नहीं देखता, वक्त ही नहीं देखता। फिर मैनू उत्थे भाई गुरदास जी की पंक्ति चेते आउंदी है, हे प्रभु तेरे बोल सुन सका मेरे कोल कन्ने कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका मेरे कोल जबान ही कोई नहीं। कहदे को ना सुरत ना सरवन सुनवे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए मन उन मन लेवल आई है। हे प्रभु जो गुरमत है जो तेरे विचार ने वो मेरा मन कबूल नहीं करता, नहीं मनता, कहिंदा कह पिया मन नहीं मनता। और जिहड़े मेरे विचार ने जो मेरी सोचनी वो तैनू कबूल नहीं, वो तैनू परवान ने। बड़ी कीमती गल कह दी है भाई गुरदास जी, जो तेरी सोचनी है हे गुरु ये मैनू कबूल नहीं, मैं नहीं मनता। जो मेरी सोचनी है तैनू कबूल नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, संबंध किवें जुड़े। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है। जो गुरु दी मत है जो गुरु दी सोचनी है जो गुरु दे विचार ने मन नहीं कबूल करता, और जो मन दी मत है जो मेरी सोचनी है जो मेरे विचार ने वो गुरु नू कबूल ने, तो संबंध किस तरह जुड़े, विचारां दी सांझी नहीं बनती।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नू पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। उह किहड़ी ताकत है, उह किहड़ी मिकनातीस शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं इक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है।
1: परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द विच, संसार प्रगट होया फिर शब्द। हर मनुख अपने बोल दे राही प्रगट होंदा, शब्द दे राही प्रगट होंदा। वेख के कुछ नहीं पता चलता, आप इतने सारे बैठे गुस्ताखी माफ, वेखण नाल उम्र का पता चल जाएगा, ये बिरध है, ये जवान है, ये बच्चा है, उम्र के अंदाजे लग जाएंगे। वेख के कपड़िया का पता चलेगा पहने होया की है, वेख के रंग रूप का पता चलेगा, वेख के इतना पता चलेगा स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि जवान है, गोरा है काला है सांवरा है, कपड़े कैसे ना, और कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये मनुख की है, ये मनुख की है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, दुखी है, सुखी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हर मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द विच, अपने बोलां दे राहीं। शेख सादी साहब कहिंदे ने ता मरदे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जितने चिर तक पांच दस दिन किसी की बोल चाल ना सुनिए पता ही नहीं चलता मनुख का मनुख की है। कपड़े तो धोखा लग सकता है, रंग रूप तो धोखा लग सकता है, लगता है। जो मनुख का रंग है, जो मनुख का रूप है, जो मनुख के कपड़े ने, जो मनुख की उम्र है, इस तो उस मनुख के स्वभाव का अंदाजा नहीं लगता, कुछ भी नहीं पता चलता, बोलचाल तो पता चलता है। परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द तो, मनुख की होंद प्रगट होंदी है शब्दों तो, बोलचाल तो। परमात्मा प्रगट होया शब्द तो वह शब्द की है उस शब्द नू जिन्हां ने पकड़िया ते समझिया बस उन्हां नू अवतार कहिंदे ने उन्हां अवतारां दे राहीं शब्द प्रगट होया इस वास्ते अवतारां दा शरीर गुरु नहीं है वह शब्द गुरु है मल्ला पहला मल्ला दूजा मल्ला तीजा मल्ला चौथा मल्ला कहिंदे ने मकान नू शब्द मकान बदलता रहा कि शब्द प्रगट होया पहले मकान विच मल्ला पहला फिर

पीछे खड़ा है, एक कदम इसने पुटिया तो मेरी बराबरी ते आ जाएगा और एक कदम पुटिया अगे निकल जाएगा। इस वास्ते राजनैतिक जिस जीने ते चढ़ के सिंघासन तक पहुंच देने उस जीने नु तोड़ देने, उस पौड़ी नु तोड़ देने, दूजा ना चढ़े। लेकिन जिस जीने ते चढ़ के एक अवतारी पुरुष परमात्मा तक पहुंचता है उस जीने नु संवारदा है, शिंगारदा है, ताकि होर भी पहुंचे, और भी पहुंचे। बस इन्नी होगी। जो मैं जाने सारा जगत जान लवे, नौखंड पृथ्वी का भ्रमण है गुरु नानक का, हैरानगी है। जो मैं जाने सारा संसार जान लवे, जो मैं रस माने सारे ही रस मान लें, जो आनंद मेरे कोल है सारे ही मान लें। जगह जगह उस शब्द नु सुना दे रहे। तो शरीर ते समय का हिस्सा है, बिरद हो गया शरीर। मैं फिर अर्ज करा, तन चाहे अवतारा दा है, देवी देवतियां दा है, किसे दा भी है, तन नू काल खा जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमाशा। समय दे जो कुछ बने है मिटेगा, शरीर समय दे बने है, काल दे बने है। इस वास्ते गुरु घर दे कह दिता, शरीर गुरु नहीं है तो मिट जाता है, फिर की करोगे, फिर की करोगे। शब्द लंबे समय तक कम करे, उसे शब्द नूं प्रवेश करा दिता गुरु नानक ने लेने दे अंदर। वो धन गुरु अंगद देव जी महला दूजा, मकान दूजा है। वो शब्द हुण दूजे मकान दे, तीजे मकान दे, चौथे मकान दे। जोत ओहा जुगत सहकाया फेर पलट गए। श्री कृष्ण प्रगट होए गीता दे राहीं। गीता नूं एक पासे कर दो, कृष्ण दी होंद नहीं प्रगट हो सकती गुस्ताखी नाल। हर मनुख अपने बोल दे प्रगट होंदा है, परमात्मा तक बोल दे प्रगट होया शब्द दे। कुरान दे राही मुहम्मद साहब प्रगट होए। ना निकलदी कुरान ते पता नहीं कितने संत भगत इस दुनिया च होए। और केते तुदनु गावन से मैं चेतनावन, नानी क्या विचारे हे प्रभु, पता नहीं कितनिया ने तेनू गावे है, तेरे नाल जुड़ गए, मुक्त भी होए, पर उन्हां दे कदमां दे निशान जमीन ते नहीं बने, कुछ बोले ही नहीं। परमात्मा दे शब्द नू प्रगट ना कर सके, शब्द दा आनंद माण सके, शब्द नाल जुड़ के मुक्त हो गए, पर शब्द नू उस अनुभव नू प्रगट ना कर सके। जिहड़े प्रगट कर सकदे ने अवतार श्रेणी च, वह आ जांदे ने। फिर भारत दे ऋषि मुनिया ने वंड कीती है, चार कला अवतार है, अठ कला अवतार है, अंसा अवतार है, अंश मात्र है। अपने बोलां दे राहीं किसी ने थोड़ा प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, कोई 16 कला अवतार है। अवतार मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा तो शब्द होया, शब्द तो संसार होया। उस शब्द की है जिस तो संसार होया है, संसार आया है, तो जिस शब्द दे राही संसार आया है, संसार उसे ही शब्द दे राही वापस भी जाएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, जो उत्पत्ति उस तो हुई है तो परले भी उस तो। जिस दरवाजे दे राही तुसी गुरुद्वारा साहब दे अंदर आए हो, इसी दरवाजे राही बाहर जाओगे, और की शब्द तो संसार आया, शब्द दे राही वापसी होएगी संसार दी, आज नहीं कल, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, करोड़ां अरबां साल बाद, पत्थर भी एक दिन जानगे, परम नूर बनेंगे, मिट्टी बनेंगे, वनस्पति बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, फिर मनुख बनेंगे, फिर किधरे जाके साधना तपस्या करके फिर परमात्मा दे परमात्मा होणगे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जिस शब्द दे राही संसार आया उसे दे राही वापस आना, उस शब्द की रूपरेखा भी गुरु गोविंद

दमदान सो संयम नेम अनेक बसेख है दे अर्थ फिर कर देना तीर्थ दा इशनान अज्ञानता दी दया। महाराज कहिंदे ने दमन करना इंद्रियां दा वखावे दा दान करना इंद्रियां नूं बन्नण दी क्रिया संयम रखना अपनी मर्जी अनुसार कई तरह दे नेम बना ले विशेष करके भी आ दिना साडा विशेष नेम चलदा पिया जी। अगे महाराज कहिंदे वेद पुराण हिंदुइज्म दे ग्रंथ पूर्व दे ग्रंथ कां जी सिद्धे चार वेद अठारह पुराण कतेब कुरान चार कतेबा तुरेत जंबूर अंजील जेडे असी पढ़ने जी पछम मत दियां किताबां इहदे विच तुसी बाइबल लै लो तुसी कुरान लै लो यूदी मत ओल्ड टैस्टामेंट न्यू टैस्टामेंट चलो इहो किताबां पूर्व ते पछम दे ग्रंथ। महाराज कहिंदे वेद पुराण चारे वेद अठारह पुराण कतेब कुरान कतेबा अते कुरान जमीन आ धरती ते जमान वैसे जमान दा लफ्जी अर्थ आकाश भी है कुछ विद्वाना ने जमान दा अर्थ समा भी कीता जबानी नाल पर जमीन ते जमान शब्द दोनों टुकणगे अर्थ जमीन ते आकाश होवेगा। इहदा मतलब इस धरती ते इस आकाश दे थले जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने मान ले तू सारे पढ़ी जा रहा है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान सबना ने सारिया दे सब ने देखे कोखे जमीन जबान सबान के पेख है सारिया नू चंगी तरह कोख्या। हुण इत्थे भी थोड़ी जिवें बेनती करदिया मन च आवेगा भी पाठ पढ़न की गल तां गुरबाणी भी कहिंदी हुण गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ की गल करदे आ उत्थे नाल विचार की गल करदे आ जिथे विचार की गल करदे आ उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब आचार की गल करदे आ पाठ विचार और उचार। महाराज ने देखो बाणी च सी मेरा ख्याल इत्थी कथा कीती सी जी ए पड़ पड़ गड्डी लदियां इत्थी कीती सी जी महाराज दी आशा की वार च उत्थे महाराज जी ने सारे ग्रंथां दा जिक्र करके इन्नी पढ़ाई कर लै पर गल फिर भी उत्थे मैं पढ़ लिया पर नाल खौमे दी तय फिर जम गई मैं तां एडा वड्डा पाठी आं ते कदी पाठ नहीं कीता पड़ पड़ गड्डी लदियां पड़ पड़ भरियां साथ पड़ पड़ बेड़ी पाईयां पड़ पड़ गड्डियां खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। इस गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे नानक लेख है एक गल सिमरन जे तू ग्रंथ पढ़ रहे हैं ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। गुरु गोबिंद सिंह कहते सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख ल नानक लेख है एक गल होर खौमे चखना चाख। इनू गुरु अर्जुन साहब कहिंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो ए गल नू गुरु गोबिंद सिंह कह रहा जी असल च वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख सारे देखे हो किताब सारिया ग्रंथ कट्ठे किते खोन। महाराज कहिंदे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे इन विद मिल ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वार है दीजे बुद्ध विवेका। पुराण पढ़े का क्या गुण सुनो इस बेनती नीर साहब वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की पला होया कहन लगे मैं इना कुछ चेते कर लिया। वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हूं गुरबाणी दे समझ पै जाए जेडे आपां भी झगड़िया च पाए ना हालत साडी भी हुई कहने इन्हें सारे वेद चेते ने एदी खोपड़ी च इना कुछ चेता कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसी ने चंदन ला दिता होवे। सुनो चंदन कीमती है खोते कोल समर्था है भार चुकण दी पर उहनू इन्नी बेसमझ नू समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कुख है। कई वारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो उदी कीमत दी सार नहीं पता हुंदा। वेद पुराण पढ़े क्या कागुन खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतर सपारा। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया नाम नु तां सुनिया ने बस तुकां कड कड के लड़ना शुरू कर दिता।
महाराज।

पर तन मिट्टी सी, तन अजे मिट्टी च मिट्टी नहीं होया, मन जोत देच जोत हो गया। ऐसे पुरुष लई शब्द है ए जीवन मुक्त है, ए जीव दिया जीव मुक्त है। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, एदे बंधन टूट गए ना। प्रभ की आग्या आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे, ए जीवदियां जी मुक्त है। ते होर भी सुन लो, जो जीवदियां जी मुक्त नहीं होया मर के कोई नहीं मुक्त आउंदा। मर के फिर जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है, मुक्त नहीं आउंदा। मरना मुक्ति नहीं है। जो वस्तु जी के जीवन विच प्राप्त नहीं हुई वो मर के किस तरह मिलेगी, किस तरह प्राप्त होवेगी। कुछ ते मनुख अकल तो कम लवे। मुए हुए जो मुक्त दे होगे मुक्त न जाने कोयरा। बैणी कहे सुनोरे संतो मरण मुकत के न पाई, मर के किसे नु मुक्ति मिली है? पाओ किसे नु भी नहीं, किसे नु भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो का। जो जीवदियां जी ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकया, मर के इसनु कौन ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा, किसने बनाना है? जो जीवदियां जी मुक्त नहीं हो सकया, मर के किस तरह होवेगा? तो मैर्ज करा, तन ते सारिया दे अपने घर चले जाते। तन दा घर है कबर, तन दा घर है शमशान घाट, मन दा घर शमशान घाट नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये साडा सूक्ष्म शरीर है, इसे नु चित्र गुप्त कहंदे ने। ये प्रगट चित्र जलाया जा सकदा है, चित्र गुप्त नहीं जलदा अग दे नाल। इस प्रगट चित्र नु कबर विच पाया जा सकदा है, चित्र गुप्त नु कबर विच नहीं पाया जा सकदा। चित्र गुप्त आम साधारण चित्र गुप्त सनातन मत अनुसार तेंज कहने 13 दिन च किधरे ना किधरे गर्भ धारण कर जांदा है। गर्भ धारण करन दी हर वक्त सहूलियत है। वो जिस तरह के संस्कारां दा हुंदा है, इस तरह के संस्कारां दे मां बाप मौजूद रहे, वो किधरे गर्भ विच प्रवेश कर सकदा है। असाधारण बहुत ही दुष्ट अत्यंत जालम 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। 3 करोड़ बंदियां नू मार के ते 3 करोड़ नू उजाड़ के चाइना दे क्रांति लियांदी सी मौसे तुंग ने। इस तरह दे पुरुष छेती जन्म नहीं लैंदे। औरंगजेब जैसा चित्रगुप्त छेती जन्म नहीं लैंदा। असाधारण इनू कहंदे ने। बहुत लंबे समय तक भटकदा है। कोई बिल्कुल डायण मां चाहीदी है, कोई बिल्कुल बुचड़ कसाई पिता चाहीदा है। उन्हां दे राही आ सकदा है, उंज नहीं आ सकदा। पर जिसने नाम जपया, बंदगी कीती है, शील संजम रखिया, अपने आप नूं संभाल के रखिया, कदम डगमगाए ने, ठीक है कदम ते रस्ते ते सन, कदम डगमगाए नहीं, पर कदम घर तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, रस्ते च ही रह गए। कदम रस्ते च सन, सही रस्ते च, कदम डगमगाए भी नहीं, कदम रुके भी नहीं। जीवन दा अंत हो गया, मन बेअंत तक नहीं पहुंच सकया, शरीर दा अंत हो गया, तो यात्रा रस्ते च रह गई। रात नूं असी जद सौ जांदे आ, जिथे सुते आ फिर उठदे भी उत्थों ही आ। जिस हालत विच शरीर दी मौत हो जांदी है ते मन शरीर नूं छोड़दा है, अगला जन्म उसे ही हालत तो शुरू होंदा है। पिछला ज्ञान पिछली साधना नाश नहीं जांदी। कबीर जैसा पुरुष कह रहा है, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाए। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म विच भी तेरा सेवक सी, तेरी बंदगी करदा रहा, यह गल वखरी है, मैं तेरे तक नहीं पहुंच सके। इस वास्ते अब की बार बखश बंदे को बौर न भौजल फिर, अद की बख्शिश करे, अद की रहमत करी, मैं किधरे रस्ते ची ना रह जावां।

मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोविंद सिंह मेरा यार बन गया। शब्द सुन वाले सुन, नसीरा वाहिगुरु दा नाम सी, मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोविंद सिंह मेरा यार बन गया। यार नू पुत दे के आया, ओदे बदले यार ने केस दे दिते। फिर अर्ज इन भाई नंद लाल साहब दियो शेर, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे। ए परी लफज दर्द पुरी नहीं नू पढ़ना, परी अपरिया नहीं होंदिया, अजड़िया कहने बड़े हुसीन परियां। ओ वाह वाह भाई साहब कहने लोको का दिया परियां दे मुआं दिया गल कर दे, एक बारी मेरे गुरु गोबिंद सिंह दा चेहरा देखो, एदे सरूप दे सामने परियां दी भी कोई कीमत नहीं। मेरी फिर बेनती है, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, हर दो आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां। मेरे माही दे एक वाल दे विच एक जुल्फ दे विच दीन ते दुनिया दोनों बजे हुए। मैं आप नूं बेनती करा, मां ने केस पाले। भाई तारू सिंह अमृतधारी है, आप हलवंद है जी, शाम नूं तिन्ने मां ते दोनों भैन भरा तिन्ने बैठ के सिमरन करदे आ, कीर्तन करदे आ, ते पिंड विच इन्ना सन्मान जी, की हिंदू की मुसलमान, मैं अगे अर्ज करांगा, हर बंदा भाई तारू सिंह नूं रज के सन्मान दिंदा। इथों तक जिहड़ा मैं पिंड सिंहपुरा कहा ना नेड़े, ये नवाब कपूर सिंह दा पिंड सी, जिहड़ा सिंहपुरी ने फैजलापुरी जी दी मिसल सी ना, ये उन्हां दा पिंड है जी। इलाके दे जिन्ने चंगे जीवन वाले ने भाई तारू सिंह दा बहुत सन्मान करदे। अज शाम नूं भाई साहब आए, सारे बाणी पढ़ के तिन्ने जने खटे, ते मां नूं कहिंदा, मां अज दुबारा फिर आनंदपुर साहिब वाले दिन आ गए। उन्हें पुछया जी की मैं थोड़ा जी इतिहास तां लै लिया अज विचार नूं विराम दे के, क्योंकि कल मैं बाबा जी का जिक्र किया सी, अज एक गुरु हरकृष्ण साहब का अगले हफ्ते पुरब आना। भाई साहब कहने, मां आनंदपुर आ गया, पुत की समझी नहीं। कह लगी, अज मैं सिंह देखे ने, कचहरे पाठे ने, सची मुची लीरां बन गए ने, गात्रे पाठे ने, रोटी नहीं मिलती, खेतां चा ही लंघे ने। मां अगो कहिंदी, पुत मेरिया पता मेनू भी है, पैरां च जुत्ती नहीं पर सिदक उहनां नूं, जिहड़ी गल मैं सबर कही, सिदक उहनां नूं कंडियां दी छालियां दी पीड़ नहीं होण दिंदा, उहनां दे तन ढक्कण नूं कपड़े नहीं पर सदक ते गुरु दी रजा उहनां नूं सर्दी गर्मी नहीं लगन दिंदी, नींद नहीं कई कई दिन पूरी हुंदी, तुरे रहिंदे आ। पुत मेरिया सबर ते सिदक उन्हां नूं अपनी गोद विच सुवा दिंदा है, उन्हां नूं रोटी नहीं मिलदी, ढिड विच कड़लां पैंदियां ने पर सिदक उन्हां सिंगां नूं भुख नहीं लगन दिंदा। कहिंदा, मां आपां की कर सकने आ सेवा वास्ते, जिवें भाई साहब कह के गए किन्ना उत्थे चल रहा है। वेखो असीं किसे दे विरोध विच नहीं भी फलाना धर्म की कर रहा है, साडे प्रबंध दियां नलैकियां करके सब कुछ हुंदा पिया। उत्थे एडा वड्डा बजट होवे, हजारां एकड़ जमीन कमेटी कोल होवे, ते फिर भी कुछ ना कर सके, इहदे विच तुसीं सारे इस गल तो जाणू हो, क्योंकि इहनूं कल्पन दी लोड़ नहीं। मैं साडी इच्छा जिवें भाई रजिंदर सिंह कह के गए, मैं चाहना 10-15 प्रचारक पैसे इकट्ठे करन लई नहीं, उहनां नूं पिंड दित्ते जाण, तहसील पद्धर ते ब्लाक पद्धर ते, ते आ वखरेवा ए फलानी जथेबंदी जी, फलाना जथा जी, फलाना, इस चीज नू खत्म करो। जे सिखी बजानी सिर्फ एक पंथ ते गुरु ग्रंथ दी गल करो, मेरी बेनती है, ता बचेगा। जे नहीं ते साडी सारी ऊर्जा जेड़ी एक दूजे नू ठिब्बियां लाण ते लगी है, सच्ची जी, एक छोटे जे गुरुद्वारे तो लैके पूरे पंथ तक लै लो, ये सच्चाई। असि दूजे नू थला लाना चाहने आ, एक दिन किसे नूं थंदे लांदे लांदे आप ही थले लग जांदा बंदा, नहीं इहदे विच उच्ची सोच लैके तुरिए। मेरी मंजिल की हो प्यारे, हो आप कुल्लू कलूहारे वड्डे च कुपरेड़े, सरदार चढ़त सिंह ने कहा अपने रणजीत सिंह दे दादे ने भी, मिसलां वंड के आपां लड़ी आ पो अपनी जथेबंदी, जस्सा संघालो वालिया खून नाल भिज्जा होया, तकरीबन 22-19 फट लगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਲੜੋ, ਪੰਥ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਤੁਰ।